बिल तक दक्कन फसे है गोते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला ददु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबे वायरु बिल नु देखी गेंग लारी वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही

चिंगाली देके पप्पू की साली जाके बोली फिर पान चबा के यू कैन डांस सारा संडे के संडे फिर पप्पू जाए डांस क्लास अंडे पे अंडे खाके पप्पू नाचे दिन गास नाचे

0: अदर में मी गेनेस्तिन साजन गे देखा है पहली बार मी हज्ज एदुन लवा हज्ज लवा हास कोल्ली मी यदु उफंदस फाहा कुरा दिम्मा एम मिया हिसाबुं देन और में मी गेनेस्तेनी मी यदु गे मी सेगमेंट तो गे तेरें इस सेगमेंट और में को में दोहा कुछ राज्य हिंदुना मी शो कुरिया गेंदा इरु बाय मालूमात और में गेहूं तेरे ना गेनेस दी गें कुरिया दानी एगो तुम आदित्य दो होम दो हंग हास
1: अंगार
0: अंगार दो में दकी मारब बड़ा गोले फ में दे अंगार दो हंग और में हास को गेनेस ते बैठ हो गे तेरे मी फार में उती
1: एतम मितनु मी बे
2: एतम मितनु एतम मितनु एतम मितनु
3: बेबीलोन के लुआफावा बगीचा की दुनिया के कदीमी हेंगा जाबगे तेरें एमएससी रुवेरी आदि पहुस बडु बिना तारीखी लेजेंड तबुना गोतुं मी बगीचा बिना कुरेवी बेबीलोन के रसके फानो नेबकत नेजर देयें एरसके फान के लोबिवा अबिकमलुं अमिटीस के हिंगम जिसुमा निकमलुं उफमवी फरबद मतीगे

मिला वैगा असलो उफ़म भी म्यूजिक डायरेक्टर उनका मावा खलियान जी आनंद जी के मसकतों मनहर उदास के जज्बाती अडा साधना सरगम के फूरी हम होशे और माय को मिला वैगे में दिए ही एदुअस्वरों एम्मिंग के हिता कुले लिला वैगा

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम असुरु नमा दो वगत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: दुहाको साह्रै नै दुःख जा साह्रो वादा नन्त
1: नो
0: प्रोमिस
1: प्रोमिस
2: एमे हुम था अबदु एकु गबुमा बाउदु वे

0: 9.2 MHz Dive FM. Abadues emmegat.
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: गांव में इनाम देहा सब बिस गांव में इनाम देनो के मैगड मकसद की गांव मा मुझे तमो के लाभ या मनफा टका वकी वकी फरदुना मदनी जमीयत का जमाय तकुना वीफार इदारा तकुन कुराम से के तका ए फराय तका दिबे रीति नंग बलागने दौलतो मिकं कम हिवर देनो के गतुम ए फराय तकुन कुराम से के तका होदा कामयाबी के अगोदन कुरुम मे इनाम नंग होशेलेने हमे कने रसूल जमहुरिया के ओफी होगे फोन होशेलों apply.presidency.gov.mv मी पोर्टल में दरिको फॉर्म होशलम के मुद्दत हमवाणी देहा 26 अप्रैल 30 वा बुरासत धोगे मंदर फो देगड़ सुमंदर के निंदा मालूमात होद मा गुलाणी हतें नोएं है सुमें अशें हतरें हतरें नंबर फोन अनुता तिने तिने तिने है दे नंबर फोन अर कौमी इनाम देहा 26
1: ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉದರೆಹುಗ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹಸಿಯೆತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿದುವರು ಅಳ್ಕುಣಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಎಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ್ತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫ

0: हाँ मैं एगोथा।
1: सुआ हाँ मैं एगोथा मिली बोने मी का मी वाग होता की शाहू इव्वाल देनन लावे इंगे ए मी देंग अम्मा तंकोले तफात को किया फोन न लावे ए इवे गोतंग एलव किया ल देन वे सुहा हम ए किया गोता वाने वाने वाने तैयार हो
2: ओके हिंगा
1: आडो हाल हम फुरत मही मिकन वाने ती तंकोले फोरी गत को मिकन कोल्लंग इ पहिंगा तैयार दो
2: या

0: कबा?
1: कालो किनारे है तेरे लिए
0: हाँ
1: नहीं इनके लोग भी सुने
0: ए बे एक निशा हुआ किया देंगे, किया देंगे, किया किया लिखो। तो गालों की लाली है तेरे लिए, होठों की प्याली है तेरे लिए। अधिक फर इव्वा देन तब
1: ओके
0: वारे रंगल आड़ो हचेंगे।
1: हम्म।

0: ए वारा बराबर वेंगे हम एक कियाले गोतत्ती कियाले मिला वो बना ले चे सुहा मवारा ती बिबड़ी
1: मिला वा इंगे
0: इंगे तो
1: कह रहा था
0: रंगड़ो हाँ तो मोले
1: कोनेगे कोनेगे पाशा
0: नूने को हाँ मवारा वारा फक का इंगे वारा बराबर ए मे म इंगा मासे के कामयाब भी है वारा बड़ा मर हो इंगे कौन लावेंगे भी मचा हाल दे मे शाहू
1: कौन में लावे इस चाहले
0: गायला वाड़ो हाल मादो क्या इग्गे अम्मा ने तो वाड़ो हाल ना
1: ओके ओके
0: हाँ से कौन लानी
1: ऐसा हुआ
0: ये नहीं मणि
1: देखा दो हाथ भी हो रहा है
0: बिल्कुल ना ओके ये मैं मतलब इब्बा दे नहीं बारा बारा उफाव जब बदल मैं कौन मेरे कौन शो प्रोग्राम्स बैर हुए बस हुआ यार शनु क्या मजा प्रोग्राम तो कि मेरे तो
1: बारा मजा
0: हाँ बारा उफाव जगह बदल दे वकीला
1: ओके

0: ki koba.
1: Safkin gold medal nagala.
0: E safke mi kaumto ke medu kami kule mubarak. Ehem vi ma kulem beenum wa kudin vesti beena kanenge fada kudin na den beenum wa message ki koba.
1: Den beenum wa message ki kule hitun kulevare kule she komme kulevare kulunas effort lash eta. Erune kamyab belli pen.
0: Varaboda shukriya ti din wagut kola.
1: Kriya.
0: उम्मीद है कि मैं कुलीवरुंग आदि मुस्तकबल का विस्कामिया भूमि है कसी हुवो वारा बड़े शुक्रिया मिगड़ी का कुरिया मिगेंदिया स्पोर्ट्स बीट मैं शोनी माला फमी वकीवलनी अन्न हो मत दो वेस कुलुं तेरे काय तुगा बदल कोलुं के उम्मीद का ऐहुं तेरी ना उफावेर बाचवेर तुहा कंगे दे आदि दिवे ही एफएम के कुरियंग हुरी प्रोग्राम तक दावतारुआ मु वकीवलाना बस्ताम देखू